हेलो नमस्कार और शिवाय दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। आज रविवार का दिन है। हमेशा की तरह आज के दिन हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत सारे मसीह भक्ति गीते, और ये भक्ति गीते आपके मस्तिष्क, शरीर, दिमाग को ताजा तंदुरुस्त बनाएंगे। इसी उम्मीदों के साथ मैं इस खंड का शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा दोस्तों, पर गीत सुनने से पहले मैं कुछ चंद शब्द प्रभु के शब्द वचन आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ कहते हैं परमेश्वर, परमेश्वर पर आशा रखे और भरोसा रखे कि वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा। इसी तरह से दुख को जो आनंद में बदल सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता है ना। तो सबसे पहले हमें उन पर भरोसा करनी चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। इसी के साथ परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते रहेंगे। तो पहला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा सिनोद मिशन कोर की ओर से गीत के बोल तेरे चरणों में। और ये गीत जितने भी हमारे श्रोता कहेंगे आकाशवाणी आइजोल एफ एम साथ के साथ जुड़े हैं, आप सभी के नाम किसी भी कारणवश यदि आप गिरजाघर नहीं जा पा रहे हो, किसी भी कठिनाई में हो, तो ये गीत आपको आनंद देंगे। इस उम्मीदों के साथ आइए चलिए सुनते हैं फिर से एक बार तेरे चरणों में।

तेरी चरणों में आए हैं हम। जी हाँ, ये मसीह भक्ति गीत हमने सुना था सिनक मिशन कोर की ओर से। इसके बाद अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले यहाँ पे हमारे दुर्गेश नागनपुरे जी क्या लिखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग आरजी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे है जी? खबर संदेश दीजिए हमें और बताइए कि हाल चाल कैसा है, वहाँ पर मौसम कैसा है और आपके पूरे परिवारजन भी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि सब खैरियत से रहे होंगे वहाँ पे। तो अगला मसीह भक्ति गीत आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए होगा। दुर्गेश जी सुनते रहेगा आकाशवाणी आइजोल। और किए गए थे कॉल रिंग लिखते हैं, हेलो कपूदू तक आरजे, नमस्ते जी। नमस्ते मेरे दोस्त, आपको भी आज दिन को ऑनलाइन करें बहुत पेन क्यों क्यों करेगा क्यों क्यों लो घान हो लो चकने दो नहीं, बाद में आपको चैलेंज करेगा हम, ठीक है गई जी। ललदिन पुया फाल कौन वेंगलाई से लिखते हैं, आरजे प्ले ले तुर का नंगमा तान ले लुंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कठियां ते वें रंग रंग अमी ते तान। ललदिन पुया बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए और गीत हमारे लिए और आपने अपने दोस्तों के लिए भी चुना है। तो उन सभी के लिए अगला मसीह भक्ति गीत में प्रस्तुत करने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिएगा उसके लिए। और सेक्रेटरी साहब के वाला चेन पतम्स इवंगाई ओम व्या नंगनी देव इंगाई ओम लुत्तु कंगाई फिर लुत्तु से हुआ। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले ये गीत जो होगा खास करके रमा तुरियल के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी उनके दोस्त हैं आप सभी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये गीत होगा दोरपुई वेखर मसीह संगति गीत मंडली की ओर से। गीत के बोल बादशाह गीत मैंने पहले ही कहा था, रमा तुरियल तान अभी तक इन लान दो

बात छ मसी भक्ति गीत हमने सुना था दौर पुवेंग थर कौरन मसी संगति गीत मंडल की ओर से और गीत जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए तो मैंने सुनाई था, खास करके हमारे दोस्त रमह जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके लिए, उनकी यादों में मैं उनके लिए गीत समर्पित कर रहा था। तो अगला गीत फिर से एक बार सुनने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे हमारे दोस्त ललित पी एफ फाल्कन लाइन से क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं आरजे प्ले ले तो वर्खा नगमा तान ले लो आई क्लबे जोंग जोंग तान FM ngai sang MM 20 boka kini pon kan ngai sang che oh FM ngai sang tu zong zong he kan ngai sang ve zel thina ni tikan lo shado na ni secretary saab ke wala kya likhte hain aaj time se tan le lal din puya fal ko nami tan le ke ngai te te tano shukriya yadi aapke dost hame sun rahe ho to ye geet आपके लिए केवाला ने हमारे सेक्रेटरी साहब ने सुनाया है इंजाम ला मेट्रो सेक्रेटरी लाटलन सक्सेनी हो। और अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिर से एक बार रमलुन देंगलाई नन मिजो क्रिस्टियन फेलोशिप की ओर से गीत के बोल गाओ गाओ

Aber wieso müssen wir die Gehe zu neu haben? Wir haben einen Weg, einen Weg, einen Christian Fellowship, der uns Gao, Gao, du hast gesagt, Agla geht. Haben Sie nicht so viele Pilze, aber es ist, Bernie Wally, Good Boy, aber a Good Boy, da war ich, aber ich hielt die dann hier. Kann man nicht sagen, sie ist, aber sie ist, MS, nicht die Schramme, die. Tim, so, die ist, wie ich, okay, Good Boy. Bad boy chelo to good boy ganti long wen dan bad boy ka sms lo e veru kala khun tla ka nge pata ni o alo lang angaron ti ni pat thik se likhe ga phir se ek bar me aapke liye aapke sandesh ulug de galo chiar chale don ni o lo e veru min tiama sen ton le si lo thla kring o thiswe the lo ni di kha lo shre don ni bad boy kan तो अगला मसीह भक्ति गीत बहुत ही खास होने वाला है. ये गीत हम सुनने वाले हैं हमारे अरिजीत सिंह की आवाज पे. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये. मसीह भक्ति गीत ही कहेंगे इसको, नेकी की राह. ये गीत जब भी मैं सुनता हूँ तो लगता है कि अलग ही दुनिया में लेके जाता है. इसका ट्यून कहेंगे, इसका संगीत, पूरा शब्द भी कहेंगे दमसुंग रही लोगों का तू माही होलो इला. सबसे बड़ी अच्छी से यही है परमेश्वर से जुड़ने के. तो आइए चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज पे नेकी की राह. और इसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिलने वाला हूँ फिर से एक बार 10:50 पर मसीह भक्ति गीतों के साथ दार सोमले मिनी समा लेगा. तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आज एफ एम 107.8 आरजे टाइम्स.

अभी के लिए आपसे विदा नहीं लेने वाला है क्योंकि प्रैंक कर रहा था मैं आपको, बहुत समय है आपका और मेरा। तो अगला मसीह भक्ति गीत नेकी की राह अरिजीत सिंह की आवाज पे।

तो दोस्तों, इस गीत के बाद अगला गीत जो होगा इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, और मैं आपसे मिलूंगा 10:50 पर मसीह भक्ति गीतों के साथ। तब तक सुनते रहेगा आकाशवाणी आइजोल FM सौ। इसके बाद आने वाली है आपकी प्यारी सी मिजो आरजे, जी हाँ, सुरीली सी आवाजों की मालकिन गाएंगे इनको आरजे सांगते आने वाले, उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिएगा। और ये अंतिम गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ दौरपुई वेगधर कौशल मसीह संगति गीत मंडली की ओर से, गीत के बोल बे इम्तिहान।

हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107 पे FM जोय। रविवार का दिन, मैंने पहले ही कहा था कि आज के दिन हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत सारे मसीह भक्ति गीत। हमने अपने पहले भागों में भी सुना था मसीह भक्ति गीत, तो इस भाग में भी उस श्रृंखला को जारी करते हुए हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं मेले दुई जी फाना एक ओंकार मोई और पीसी लियन मिंगटांग की खूबसूरत आवाजों में जी हम बहुत सारे मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार सुनने वाले हैं। अधिक समय ना लेते हुए प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष दे, इसी उम्मीदों के साथ पहला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। और जितने भी सुनने वाले श्रोता किसी भी कारणवश गिरजाघर नहीं पहुँच पा रहे हो, मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हो, मस्जिद नहीं पहुँच पा रहे हो, आपके लिए यहाँ से हम आपके पूरे परिवार को आपके रेडियो के साउंड जहां तक पहुंचेंगे ना वहां पे मंगलमय, जी हाँ, शुभकामनाएं देते हुए पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहला मसीह भक्ति गीत सुनने वाले हैं मेलोडी जी फराई की आवाज में। गीत के बोल यीशु ख्रिस्ता।

मेलोडी जी फाना गा रही थी। बहुत ही खूबसूरत गीत यीशु ख्रिस्त। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये होगा कांटों में राहों में कांटे अगर हो। तो यदि आपके राहों पे कांटे भी हो, प्रभु परमेश्वर आपके साथ चलेंगे तो वो उसका दुखने का ज्यादा गम नहीं होता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम सब जानते हैं हमारी जितने भी निराशाएं हैं, हमारे जितने भी दुख दर्द है वो दूर कर देते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं राहों में कांटे अगर हो।

राहों में कांटे अगर हो, गीत सुना था हमने ये एंथोनी राज के संगीत पर उनकी आवाज पर। इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत गीत था। जब भी ये गीत सुनता हूँ तो मुझे एनर्जी जो होती है ना अलग से मिलती है अपने शरीर में, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी पूरे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेके नहीं चल सकते इंसान। हमारे दिल में ऐसे भी दिन आते हैं कि हमारी जिंदगी में पूरे निराशा से भर जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ रहा भी नहीं है, सब बंद हो गया दरवाजे हमारे लिए, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो जब ऐसा समय आता है तो ऐसे गीत सुनते हैं तो हमारे दिल को और हमारे दिमाग को और हमारे पूरे शरीर को एक और नया जोश ऊर्जा मिलती है। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत उसी जोश ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए सुनने वाले हम मेलोडी जी फाना की आवाज़ में हमने सुना था। तो अभी हम सुनने वाले को कारमोई की आवाज़ में यीशु बुला रहा।

बीसी लियानमिंग था की आवाज में हमने ये मसीह भक्ति गीत सुना था चुपके चुपके। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले हमारे दोस्त ललिन पुया फाल्कन वेगलाई से क्या लिखते हैं और जे प्ले ले तुर्खा नंग मोतान ले गाय थवे जोंग जोंग तान ले गियन ते वे संगमी ते तान ले आर जे जोंग जोंग तान। दिन पुया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए फाल्कन वेगलाई से। एफ एम गाय सॉन्ग एम एम टू तिया सही तो खान एफ एम गाय सॉन्ग मी ही कन गाय सॉन्ग लेट वे थ्री नी ती खन लक्ष्य दोन निया। और अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मेलोडी जी फानाई की खूबसूरत आवाज में। हम सुनने वाले हैं तू है पिता।

तू है पिता परमेश्वर। ये गीत मसीह भक्ति गीत हमने सुना था, बहुत ही खूबसूरत गीत मेलनी जी फानाई की आवाज में। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ कोंकर मोई की आवाज में, गीत के बोल महिमा।

कुंखार मोए की आवाज में हमने मसीह भक्ति गीत सुना था महिमा। तो इसी के साथ अगला गीत जो होगा हमारे लिए अभी के लिए अंतिम गीत होने वाला है और मैं आपसे मिलूंगा कितने बजे, 12:50 पर। जी हाँ, दिन का दोपहर का नाश्ता करके भर पेट फिर से गपशप करेंगे, आपको मसीह भक्ति गीत भी सुनाएंगे हम। अभी के लिए आरजे टाइम्स आपसे विदा लेता है, मिलते हैं 12:50 पर। जी हाँ, इसके बाद आने वाली है आपकी प्यारी सी सुरीली सी आवाजों की मालकिन, पर ये इस बार होगा इंग्लिश के। जी हाँ, आरजे आरजे एली उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिए। आरजे टाइम्स आपसे विदा लेता है, मिलते हैं 12:50 पर। और अंतिम गीत पीसी लियानमिंग थोंग की आवाज में सहारा छोड़ के जाने वाला हूँ, और सीजत क्या लिखते हैं जाने से पहले पढ़ के भी सुनाऊंगा मैं। गेम्स खेल पा इन कलूंगा क्लास नहीं कक्के कलो phut ka pai mo tla tani o ai ai zelania sms ton claim ka zer to a tini lama chon claim chi lo tam the yang ber khalo ton zel do ne chuan englam pange lo khela ti te polo report la nub deu deu khanom lo to ro to antim git pc len ming thang ke awas me phir se ek bar sahara

हेलो नमस्कार और छिपे दोस्तों, मैं आरजे तैयब साहब सभी श्रोताओं का तीसरी बार स्वागत कर रहा हूँ। और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। तीसरे भागों में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मसीह भक्ति गीते। आज रविवार का दिन है, प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इसी के साथ में इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा। आप सभी से पहला गीत प्रस्तुत करने का समय भी हो चुका है। अधिक समय न लेते हुए मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ रमलू नॉर्थ नॉन मिजो क्रिस्टियन फेलोशिप की ओर से गीत के बोल दिल को ना चाहिए।

रमलुन नोर्थ नॉन मिसाउ क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से दिल को ना चैन मिले। तो इस खूबसूरत मसीह भक्ति गीतों के बाद अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ यीशु मिनिस्ट्री की ओर से तुम सा गीत के बोल होंगे। गीत बहुत दिनों से फरमाइश आई थी रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। यीशु बैंड का गाया हुआ गीत था ये। आशा करता हूँ कि जितने भी लोग यीशु मिनिस्ट्री को पसंद करते हैं तो इस गीत को भी जरूर पसंद करेंगे। और इस गीत को खास करके फिर से एक बार मैं डेडिकेट करना चाहता हूं जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 107.7 के साथ और किसी भी कारणवश गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे हो, आप सभी के लिए गीत होगा। सुनने का माध्यम कोई भी हो, रेडियो से हो, कार टेप से हो, फिर मोबाइल ऐप से हो या फिर स्पीकर ऊपर से कहीं से भी सुन रहे हो। और मैंने कहा था कि मोबाइल ऐप्स, जी हाँ, मोबाइल ऐप से आप हमसे जुड़ सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा हो तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि प्ले स्टोर पे जाके ऑन एयर ऐप्स डाउनलोड करके वहाँ पे आप सर्च बार बटन पर FM ZO यानी कि आकाशवाणी आइजोल FM 107.7 टाइप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए चले सुनते हैं तुमसा

यसुआ मिनिस्ट्री की ओर से हमने ये मसीह भक्ति गीत सुना था तुमसा। तो इसके साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, पर उससे पहले फिर से एक बार हमें हमेशा इस बात को याद रखनी चाहिए कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे कुर्बान बलिदान दिए हैं, तो इसलिए हमें उनके रास्ते उनके पद पर हमेशा उनके सिखाए हुए सीख रास्ते पर चलनी चाहिए। किसी के लिए अपने मन पे बुरी भावना ना रखे, यही सबसे बढ़िया तरीका है। आजकल की दुनिया में हम सब जानते हैं कि ईर्ष्या भावना बहुत बढ़ गई है एक आपस के लिए, तो उसको हमें थोड़े कम करनी चाहिए ताकि दुनिया और शांत बन सके और जीने के लायक बन सके। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ वाइवा कौन पास्टर बीएल जायपॉल की ओर से, जी हाँ गीत मंडल की ओर से, गीत के बोल झूम झूम। माफ कीजिएगा अभी मैं आपके लिए झूम झूम वाला गीत प्रस्तुत नहीं करूंगा, हम सुनने वाले हैं यीशु करेंगे।

यीशु करेंगे तेरी जय जयकार गाते हुए वाइव कौन पास्टर बियल गीत मंडली की ओर से था ये मसीह भक्ति गीत। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा बेथलहम वेंकलांग मसीह संगति की ओर से गीत बोल जय जय प्रभु यीशु की।

तो दोस्तों, अगला गीत जो होगा इस खंड के लिए मेरा अंतिम गीत होने वाला है, और मैं आपसे मिलूंगा 2:35 पर हमारी आखिरी भागों में मसीह भक्ति गीतों के साथ। अब तक हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहेगा आकाशवाणी आइज़ोल FM FM 100.7। और जाने से पहले यहाँ पे अंतिम गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा वाइवा कौन पास्ट और BL गीत मंडली की ओर से गीत के बोल झूम झूम। और इसके बाद 1:20 पर, जी हाँ ठीक है, 1:20 पर हम सुनने वाले हैं वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम मेरी बात माई वॉइस। तो उसका भी इंतजार कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, रोचक होने वाले है ये कार्यक्रम। तो इसी के साथ आरजे टाइम सभी के लिए आपसे विदा लेता है, मिलते हैं 2:35 पर।

हेलो नमस्कार और चिबाई दोस्तों, मैं आरजे टैम सा आप सभी श्रोताओं का चौथी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे सौदा सुन सात पे FM जोय। दोस्तों, आज का ये हमारा पहले चरण का आखिरी खंड होने वाला है और इस खंड को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। मसीह भक्ति गीत है। अधिक समय ना लेते हुए आप सभी को प्रभु की स्तुति आराधना करने का मौका देने वाला हूँ, क्योंकि पहला गीत जो कि अभी आप सुनने वाले हैं ये होगा यीशु नाम, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। यीशु मिनिस्ट्री की ओर से जितने भी लोग आकाशवाणी एज़ वेल FM वॉइस और साथ के साथ जुड़े हैं, आप सभी के नाम ही गीत।

सुनम यसो मिनिस्ट्री ओर से हमने मसीह भक्ति गीत सुना था, तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय फिर से हो चुका है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पता चल रहा है आपके संदेशों की ओर। यहाँ पे ललदिन पी एफ फाल्कन रेलाइन से लिखते हैं, आरजे प्ले ले तो उर्खा नगमा तान ले लुवाई थवे जोंग जोंग तान ले का ट्रियन ते वेंग श्रंग श्रंग अमी ते तान ललिन पुए फाल कौन वेंग लाई। बहुत बहुत शुक्रिया एफ एम गाय सांग एम तुई नीति कच्ची यंग तो है ओ के गई थे कॉल रिंग लिखते हैं। ओ ये तो एली के लिए एस एम था, गई थे जी कहाँ पे गायब हो गए बहुत दिनों के बाद। आप की पिक्चर देंगे उनको मिला मुझे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ दम छत गए पोबे सही ला। और अगला मसी भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा ललटन पिया और उनकी दलों की ओर से गीत के बोल सरों का गुलाब।

अभी जो मत से भक्ति गीत हमने सुना था, ये था ललटन पुयार उनकी दलों की ओर से सरो का गुलाब। तो यहाँ पे हमारे दोस्त सीजत क्या लिखते हैं, आरजे प्ले ले तो ओके। सीजत का तो अलग सा है, ठीक है कि कोर को प्ला इलास्टिक वो अपा इन कलोंगा आए थरेंगे तीन लोग तक इन होंग दौन। बहुत बहुत शुक्रिया सीजत जी। और आप कौन से गेम्स खेल रहे हो, गेम्स खेल खाई लोग एम तिखा लो रिपोर्ट ले जुआईला एम एल लम पंगे पबजी लम पंगे लल दिन पी एफ एल को वेंग लाइसे लिखते आर से प्ले ले तो रखा ये पढ़ दिया था मैंने ओके। नगमा तान ले लोंगा थवे जोंग जोंग तान ले आर से जोंग जोंग तान ले का छियन ते दोर पुई अमी ते जोंग जोंग तान तियांगो तू तंगे नियांगो दार लोन अमी ते पोनियांगा। बहुत बहुत शुक्रिया लल दिन पी एफ एल कौन जी संदेश देने के लिए हमें। और यहाँ पे के थे कोल्ड ड्रिंक लिखते आर से प्ले ले तो रखा कप्पू दू तक आर से उनकी पार पारिपुले उसको केवल ते लोपिया धरा दिखलो ऐ रिगो तन बॉय पुई तो लो नान ओ लोग तकलो माई थलाकन लो लो पुई ये तो रेन का लान चीन कुंग मक रोंट दिमाग ने और पुई ने नेम के दोन में गई तेजी। बहुत बहुत शुक्रिया उनकी पार पारिपु और उसको केवल ध्यान से सुनिएगा अगला गीत। इन पियन थर के चुंगाई दोनों में ऐसा गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और अगला गीत जो होगा द विश्वासी की ओर से गीत के बोल प्यार का सागर।

दोस्त वैसे के साथ अगला गीत जो होगा आज के लिए हमारा इस पहले चरण का अंतिम गीत होने वाला है, तो उससे पहले सिज़त हमारे दोस्त क्या लिखते हैं। खोई लमा पबजी ते चो खेल थी एम वे रे रे लो चुआन हे थिलियन चुआन हे थिलियन जानदार सोने मिनट सोम थुम मिन मिन थिन तीर तफाउ में तीने तो ये क्या खेल रहे अब बारबी वे गेम गेम्स खेल चो वो थिल रेम दान वेल देखा दंग दाई कॉफ में और यहाँ पे इमो कपूर तक आरजे मुंबंग तंपाओ ले थिल हो में तमंतिया का मुंबंग के पुरील ड्राम ने कलम इंसुअला ओके के ले मो कलाउ तिया के पुइसो मुंबंग में मे लोग का तिया बागबु का का का थमा कोई ब्लॉप ब्लॉप चुआन अनुम वे दे वसिन ओ अहो मियलो ने मुंबंग मानी से अंगम वे दो इंगम वेदो न मी बाय बाय ति निंगम रा फ्लक ति नि जमो कन कम थ्लांग आ कम थ्लांग पोन लो कन वरंदा जोंग जोंग आ तेंगो का तार नेम लु तुक तेंग लु खा तो चलिए अंतिम गीत सुनने का समय हो चुका है। मिलते हैं बहुत ही जल्द दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहे आकाशवाणी एजोल एफएम 107.7 आरजे टाइम सभी के लिए आपसे विदा लेता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी उम्मीदों के साथ। तो आइए सुनते हैं डेविड सिंगर्स की ओर से आजा प्रभु।

0: All right, that's all we could listen and present in this time of Western Music Devotional. Thank you all so much for tuning in. Hei hi, Akashwani ai zolani, klaidar thum ani atuna chuan News Bulletin, Hindi chia Delhi milak chon ilongai thang u.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 942 रूपये हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला है। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वालबोई। आज रविवार का दिन है, जून 7, और इस स्टूडियो में मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपके आरजे ज्वालबोई। और इस जैसे कि हमें पता है दोस्तों, रविवार के दिन हम हमेशा ईश्वर की स्तुति गीत सुनते हैं। तो इस हमारे आज के हमारे पूरे खंड में भी हम ईश्वर की स्तुति गीत सुनने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों, जिंदगी के हर रास्ते पर जो भी आए, जो भी पत्थर आए, जो भी खुशियां या गम आए, हमेशा ईश्वर मसीह को आप धन्यवाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है ना। इसलिए हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और इस खंड में ईश्वर की स्तुति गीत करते हुए हम सुनेंगे ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए एक प्यारा सा गीत। और आप हमारे साथ लगे रहिएगा और हमारे इस खंड को सुनते रहिए, अपने प्यार भरे SMS भेजते रहिएगा। और विंता न कन हुन थो नी न कन उचन तो आ आरजे ज्वाल बोई नैन हुन कन मंगो दो न के मा आरजे ज्वाल बोई गे खकुरन छुले ता आ पथियान फकन लाते कन गाय थदो न हे कन शेयर तंगिन पथियानी आचवानिन पथियान फकन लाते कन गाय थी ना चुवान चुवान इंगपो पथियान थू लम हुई जों ते कन वे जों ते कन रिल रु ओमंग ते हन शेर दु ते ले एमो आ मसोन तान तो रंग ची ते थिंग पुइन ने यंग छु खांग जों जों खा SMS आ अलिंग फिकनी ते खा कन हन सोइन न ले दुआ इन SMS दु ओम तक तक देखा मिनो थोन ले चुर चुर तुर खान इन कन रिक्वेस्ट नी ओम तिचुआन इन ओ कलो सोई ता कं खान इन सिना खान हिंदी टुंग इन तोयते इन कन सोया मिजो टोंगा कन सोइले दु छु कन शिंग नुना हेन हर सनते बोइने ते लोम न ले हिम न ते पो कन टोंग छिना हिंग जोंग जोंग आ हियान इन पथियान हेन लोम थ सोइ हि इथे हिल छिन लवांग ओ ति हि कैन चा दु नि मो पथियान हेन लोम थ सोइ हि कन थराउ नुन ता न चक न ना रनि या चोवान चोनिन पथियान हेन आ हेन लोम थु हि ए सोइ न तुर तम तक ओ

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था शुक्रिया. अपने इस खंड की शुरुआत के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं. मिंगमोई ते ह्यान इन ज्वाल बोए नमस्ते ड्यूटी नुआमले रंती आ मिंगमोई ते वो इन इन खो मेम ये वो इन संसिन ते ख्वाते लुम वे हर हर एम ये निज्वन हन वाप ठखोप में वो सुवान स्वानी खुआ ही लुम सिया सुवांगी तु ही इन ट्रियो चो तोरे ने देखा कन हन सेप्तेर ले से उबोकने. तो चलिए नेक्स्ट हम सुनेंगे अगले गीत की ओर बढ़ते हैं. अगले गीत जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि है यीशु नाम. और शायद आपने ये कभी सुना होगा ईश्वर के नाम पे. ये है यशवा मिनिस्ट्रीज की ओर से. ये आप सबके लिए स्वामी मोहिते तान खानिंग का नान बोकंगे ओम यीशु नाम.

ये शु नाम बहुत ही खूबसूरत गीत था और उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ में भी आया होगा। लाही मोई ने द्रो अरिल बुक्सी या पथियान लली स्वा ख्रिस्ता मी गा ह्यानिन सकना ने थे ना दम ना ओमनी दिखा ने आ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा गीत, ईश्वर की स्तुति गीत हम जारी रखते हैं। और अगले गीत की ओर बढ़ते हुए ये हम जो सुनने जा रहे हैं, तेरे पास आता हूँ, जेम्स लोबो की आवाज में है। और यस मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको भी जरूर पसंद आया होगा आएगा। इस गीत के साथ ईश्वर की स्तुति जारी रखते हैं दोस्तों, तेरे पास आता हूँ, जेम्स लोबो की आवाज में।

दोस्तों, आपने जो सुना वो था तेरे पास आता हूँ, और मैसेज आया है यहाँ पे मिमोई ते हियारिन जुआल वो इचमा के इनखो मा जानिन पो के इनखो मांग वन फिल तक ओ मिमोई ते ही जो थुकलो रिम ही नम छेना दम चुआन वोइन अलुम खोप मै अरन तिवेनी ए खै खवा हे लुम हंती शन एम एम पो हिंगाई लौतरो हनिन एनिला अशियात ngala chiang ngal em em mei ni chuanin jil zamate ke ngei te te he tavi kung te te ke vale te anin anin kho man na bang lo ni ang ani hi chu ani ho hi chu a thling sang fal kan ti ang chi mo chang sang fal kan ti ang chi te kha ani ve do chu wang chuanin aw na kina anron anron lang thlia thlia tura ka ngai aw ti chuanin kan segment hi dar nga thling ani do na wangin kan pathian fakna la te kan ngai thak chhun zom zel do na और नेक्स्ट हम जो सुनने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही मन को छू देने वाली गाना है, तेरे बिन में कुछ भी नहीं, और ये है दुलारी चंद पंडित की आवाज में। हेलाई मो ए मे मा तेलो सी चुआनी एंग माही कनिलवनी मो ए लली स्वा तेलो ही चुआनी एंग माही कनिलव तेरो मिशिंग कन छत नते कन फिल नले कन मोई न ते एंग माही अलो निलवा कुम खुद इतूर पो ही एंग माही लो ओम चुआंग लवा ईश्वर ख्रिस्ता tel lo hi chuanin eng mai hi kan ni lo zia kan in shia chian po le mishing nun hi tloma pathian choi mo in lo om thina ni to chaliye dosto is geet ke saath ishwar ki stuti hum karte hain bahut hi pyara geet hai tere bin main kuch bhi nahi।

तो दोस्तों इसी के साथ इस खंड के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगी और फिर मैं वापस लौटने वाली हूँ अपने अगले खंड के साथ जो कि 6:40 में दारुगले में सोमली अक्रोन के रह दोना मिनोगाई थलतू ते मिनोगाई थलक सुनसुन सेल तोर खानीन कनीन सोमनी दारुगले में सोमली अखानीन इन तो ने छे कन तुम दोन्या ओम तिचुआनीन हे फकन लाही कन गई थलक सुनसुन मंगा इस गीत के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी और आप इस स्तुति गीत को सुनते रहिएगा दोस्तों। मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ इस खंड के लिए। आप सुन रहे हैं FM Zoy 100.7 आपके साथ है RJ ज्वाल बोई।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वालबुई। आज का ये दूसरा खंड यही शुरू होता है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि रविवार का दिन है, और इस रविवार के दिन में हम पूरे दिन ईश्वर की स्तुति गीत सुनते हैं। एंड इसी के साथ आप अपने प्यार भरे एसएमएस जो है हम पर बरसाते रहिए। सोई हुन ते अनि आ थेन खतान स्वान इन खोम तुर ते पोइन कन लो स्वाक तो मै थेया वो इन पथिया ने नि आ कन सेर दान ते पो एन अंग लवांग आ मै रोत सु आ पथिया ने नि ना अंग खानिन वो इन नि हि सु पथियान फकन ला ngai tha in nileng zan thleng in hun kan mang thin ani kha turu aw in khom kal tur te po hun lok ta kai man cheu thena tur khan du sakna kan nan chewa chuan in in khom rim chang thelo te mani in luma hom te po fm so oi sa point pasari kha in hena e in hena om renga milo ngai tha reng tur khan in a kanan som cheu ni om chuan in so so e lai te poka kan lo om mei te boka ni tui ta ka sai nei te nan kan du sak na kan han lan bok che wa sms la ma te poka nin do hun hunai ran lu te ni ti kha kan han in shil le boka ni om इस खंड की शुरुआत एक बड़े प्यारे गीत के साथ हम करेंगे, जो कि स्मर्त शुक्ला की ओर से है। हाथ उठाकर गाऊंगा। इस गीत के जो बोल है ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और कबान फरसुगिन नगमा फकिन कचोय मोय जेलंग से अने आ। तो चलिए इस खंड की शुरुआत के लिए ये प्यारा सा गीत हम सुनते हैं, हाथ उठाकर गाऊंगा, स्मर्त शुक्ला की ओर से।

तो चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैसेज आया है, गुड बॉय ह्या नार्जे जॉब बॉय कलो ल ओम ओर अंति आ वान नोम छिन तक एम गुड बॉय मिंग हि पुजो छिन हि कंतिया सुवान सुवान सेगमेंट दिना खानिन मिन लो ओम पुइजेल तुर खानिन कन हानिन ने ननि छ ओ के वाला रन लंग ता ऐ बाबा ऐ खोम बांग तो न्यांग आरजे उजवा बाई कलो ngai मन लुतुक से सेगमेंट मसबेरिटी लो सुरन त्या आ कउ के वाला ही आ रन तिवेल छीना इन खोम रे ngar ngar ले मै एंगने खोले रिल रुआ ते खाने नेंगे मो थु पाई ते पो कन ने करिंग विकुंग ते ते पो ไอ้ไงตัวไรตัวครบไม่รอนลังทวายตัวรังไงอย่างอ้อส่วนแต่เฮียนินดินปีอะแล้วดินปีฟลกอนเวงไรจังเฮียนินอาร์จีอีเพลย์เลตัวข้านังมาตันเดลงไงทวีซุงตันเนกเชียนเตวิงเชิงเชิงมีเตตันปาปาริปูตันกุ้งเตียมิงมวยเตียเกวาลตุยกวาลมีตันแล้วดินปีฟลกอนเวงไรเอฟเอ็มไงสังเอ็มเอ็มตัวรันเตียอวหันลุเตียเรงเอ็มอ้อดินปีฮีFM hi ni e a lu ni tro nang e nge he kan sia anga nang ni te in tan te pon kan tan te pon ani anga tin he nak duk me ya hianin kan sia thu angin all india radio kum som kwa tin lom na i khar na hun kha kan mang don ani ya wana pa hola ta khanin in ron i fm zo oi ngai sang tu all india radio fans zong zong te kha chu tel cheo tur khanin kan hanin so mani a e ka ke mani ni poal fe khani ti kha hanin she thar leela a tho me to chali isi ke sath stuti geet hum जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे तेरी आराधना हो, ये है अलनगंता फिलमन आनंद और शीनू मरियम के ओर से। उन्होंने बड़े ही प्यारे आवाज में ईश्वर की स्तुति गीत गाई है। हे लाही मो ए मे मा तेरी आराधना मो नंग मा का फकिन कचोय मो यंग से हतिया chuwang chuan he lai amoi ka tia milongai thatu te sms miron thon tu zong zong te tan khanin he lai special takin karon hansak chewni चलिए सुनते हैं तेरी आराधना हो।

Zwam, Gogi Valahian, RJ was all boy, good boy Khan. Kiran baka ni su ke ngai te a ti na ni ring a she bum sia si si wala le le fin pu ye le ta na ran te ni che ra khani ke ngai te khani a type a type so la kha kha ke bak ti tro ka ke khat ke bak galo ti a type so lang am khat galo sia ve le mak me sia mo ko ke wal she ti a me em ti khan o ale lan nung ber gan long ngai thla ka hun le ta a दोस्तों आपके प्यार भरे एसएमएस के लिए बहुत शुक्रिया और ये जो आखिरी गीत इस सेगमेंट के लिए हम जो सुनने जा रहे हैं मिलूंगा इतोते एस एम एस मिरोन थुन तुजोंग संग तितान खान कन लानंगा स्वान लेकिन सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट टू ही 9-2 दार कॉल एबिनित निखा निदोर तो दो ना चुवान स्वानीन दार कॉल एबिनित निखा निकनित मुले ठुप थोड़ा खान कबे से नि ओ लोहा दमुला मिलोंगाई थरेंगुला स्वानीन इन थिलती पाते अखानीन लो मिलोंगाई थरेंग जेरुला इन खोम रम चांग लोते तान खा स्वानीन एफएम जो ओई बेल सत काफिन थाक दोना नि तो चलिए इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनते हैं ये है दिल की गहराई सैम एलेक्स और हेमंत दीपिका की आवाज में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है हेला ही मोई एम एम बोकनी मो दिल की गहराई गहराई जो छुंगरिल बेर दिल जो थिन लुंग छुंगरिल बेर छुंगिन अति न खा निता नि मो पथियान फक नला कनगाई था अंगा और मैं आपसे फिर से मिलूंगी ठीक 9:02 में आप सबके प्यार भरे एसएमएस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्यारे से गीत के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7 आपके साथ है आरजे स्वाल बोई

0: is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार

0: कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
1: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए। और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
0: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
1: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके।

0: अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को

0: काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं। एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहां पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी।
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है, उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां

0: जो गैप्स हैं हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए। और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े,

0: ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में है उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आरजे इज़बाल बुई। आज रविवार का दिन है और आज के लिए ये सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। दोस्तों, इस खंड में हम ईश्वर की स्तुति गीत जो है वो जारी रखेंगे और उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ रहेंगे। अपने प्यार भरे एसएमएस हमें भेजते रहिएगा। कन्ना मुहिल मन एम लव तोरा कन वी कुम ते तेमो सी जत ते के ngai te tele o ko wa la te o din pui te thleng khan good boy te in zawai me khani no me ga te po in na muthil lo karing mut po la hun lei nem te ro zandar kwal e mit nga o ala ma e mai te ro mut nan swan ole। इस खंड की सबसे पहली हम शुरुआत करेंगे एक बड़े ही खूबसूरत गीत के साथ। ये होगा हमारे यशवा मिनिस्ट्रीज की ओर से, तुम सा कोई नहीं, और ईश्वर की स्तुति गीत बरकरार रखते हैं, जारी रखते हैं। अपने एसएमएस हमें भेजते रहिएगा। चलिए हम सुनते हैं यीशु, तुम सा कोई नहीं।

तो चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। दुर्गेश जी का मैसेज आया है। दुर्गेश ने लिखा है, गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आज रविवार का दिन आपका बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा। एंड दुर्गेश जी, शायद आप जानते भी होंगे कि स्पेशली और रविवार के दिन जो है, हम ईश्वर की स्तुति गीत सुनते हैं पूरे सेगमेंट में, पूरे दिन पूरे रात। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ स्तुति करते रहिए। एंड लल दिन पुए ही आने आर जे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले कछियां ते वेंग शंग शंग मी ते तान रंती आ दिन पुए ही फेल छीन खोप में छियां ते ही रों शरेंग जेला रों थान सकवेक जेल बुका न छियां ते पोखन लोंगाई थांग ये खा गंबे से ने ओले विकुंग ते इंगे निता है ही अरिल ले में मेदोन RG is what we call a ming sham sham he he can contribute ang oh atia ye oh bible sang ron tar chwa ka irma 923 to 24 khana yehova ye kehta hai buddhiman apni buddhi par ghamand na kare na veer apni veerta par ghamand kare na dhani apni dhan sampatti par ghamand kare e iswa krista min zir tir na khani etro mi fingi na fin na chwang su se chapo pui su se moti te ani a o chuan e be hausa e na asan mi anei sum le pai te hi chapoi pui lo turin min zir tira parantu jo ghamand kare va is baat par ghamand kare ki va mujhe samajhta aur janta hai ki main yehova hu jo prithvi par karuna nyay aur dharm karta hu kyunki main inhi baaton se prasann rehta hu yehova ki yeh vani hai ta amai ro chu he hi kan in chuan na tur chu ni o laliswa krista hi o e khe khovela min khongai khongai na le o dik taka o e mi zong zong chunga ro rel na dik keng ko tu ani a chuwan chana ma kan shet chian hi e he hi i laliswa krista kan chunga alom na ber ani tikha ani a chuwan chan ni e adik khop mei bible tu moi e thatak mei pikung te na ron share vo in pathyani nen te poina in rem le mei pikung te hi chu fing hi ka ti thina

hun le mun hi aron shit shi cha cha chi na ni mo he he takya ma hi special na ria hi ni bok chi na ni bi kong te o milomen twitter sir ore ta da eng he in te lo chang kan khwa ti har chin mo hun hi kal zung zung mai chin si a chan king ai te hi ani namaste mo me mm rj zal bo tim tham kara thumeng kur chungin klo ngak fan fan chelom i mo vai la hi shevak lo mai la o e ro ka she te nya lo play se la lo ngai ta torin kein ready te ke ngai te hi cho aming ang ang te hian in a ma te hi ngai omre ba mo chuwan chuanin ke ngai te po min lo ngai tha o thim tham te tia current om lo ni ngai garinga tu nai chu karen hi an che kho patiru a a boy tha ka ni e kan khovel hi tiro a eng po ni se thim tham ka ra khanin fm zo oirun kalau bel se la kan hlim tlang ani mai tiro तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ अपने इस स्तुति गीत को हम जारी रखते हैं जो नेक्स्ट में आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों ईश्वर की स्तुति जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है एंड इस वक्त जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं ये आप सभी के लिए जो कि गीत के बोल है चट्टान और इसे गाया गया है प्रकृति एंजेलिना समर्थ शुक्ला और जेवन जी ने हेलाये मो एम एम या चट्टान तेनिया कलुंगपुई है ये ललिसवा क्रिस्ता कलुंगपुई है मो ये तीथुपुई लंपंगनिया लमो एम एम ए ने आ प्रकृति एंजेलिना ते समर्थ शुक्ला ले जेवन तेना सखानिया हेमी मंगयानी पथियान फकन लागन गाय थांगा ओ एसएमएस मिरन थन run thon tu song song te tan ne milongai thla tu song song te tan khan he la hi ka run thlan sak cheu ni a je de sun te he chat tan

आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर। तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम